म हरिप्रसाद मैनाली पत्नी सिलवती र पुत्र गुमिल मालिक हाँसी मुख प्रेमी मित्र र दाजु भाइ सजिला माता पिता सन्मुख नारायण।

कृष्णा कृष्णा वृंदावन लय मरना पाउंत ओ कृष्णा कृष्णा वृंदावन लय मरना पाउंत ओ मरना पाउन चो मैले मरना पाउन चो कृष्णा कृष्णा वृंदावन लय मरना पाउंत।

आज विक्रम सम्वत 2083 असो 24 गते शनिबार अक्टोबर 10 तारिक बुद्धिस्ट पात्र अनुसार आज दवा के बी सुमच्यू

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्ह 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

नमस्कार रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज म बद्री प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल आश्विन शुक्ल पक्ष सन् 2026 अक्टोबर 11 तारीख आश्विन 25 गते आइतबार परेवा तिथि आज घट स्थापनाको दिन हो। आज घट स्थापना गर्नुपर्दछ। अब स्तुति गरौं। आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षण कल्पे भरी।

राजा नवश काय सारे दौलतले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परे का घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन समान।

जय श्री सचिदानंद गुरु महाराज को जय। जय श्री शांताबाई जी लगाए थी महात्मा जी को जय। हरिओम तक्षोम।

को द्वापर युग में कृष्ण जी ले अर्जुन लाइवां द्वापर युग कृष्ण जी ले अर्जुन लाइवां आत्मज्ञान दिनु भयो कुल क्षेत्र आत्मज्ञान दिनु भयो कुल क्षेत्र आत्मज्ञान दिनु भयो कुल क्षेत्र

सब चक चक स्वप्न सरी हो भजनारायण भजनारायण भजनारायण सज्जन हो। विष्णु सहस्र गीता गाऊ प्रभु का पदमा ध्यान लगाऊ सज्जन।

बाचन जाला धन संपत्ति जम्मा गलो पड़ने बाचन जाला धन संपत्ति जम्मा गलो पड़ने लायो खायो अंतिम महासरे जानु पड़ने लायो खायो अंतिम महासरे जानु पड़ने जति धन भए पनि छोडेर जानु पर्छ जति धन भए पनि छोडेर जानु पर्छ कालसँग लडाई